आलेलुया माप यादर सोहिरे सोहिरिया ओबत मात एक आदमी की विसिटिंग ने कितनु गी दहन समगिन सामी दुनी ओबोहां से मागे ऐदुम ऐसू सेकर मट सुसित दुन सेकर आलेलुया आलेलुया।